फिर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।

0: गाना हॉट है।
1: ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

Well, देखते ही देखते हम यहाँ पर हफ्ते के एंड पर आ चुके हैं ऑलरेडी। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यार हफ्ते का एंड यानी हम थर्सडे की तरफ आ चुके हैं। और अक्सर ना हम सबकी आदत यही रहती है कि हम जिस पड़ाव पर है ना जिंदगी के, कि ये वो टाइम है जहाँ पर बहुत मेहनत करके हम हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी पूरे चक्रव्यूह में मैं कह सकती हूँ हम अपने आप को कहीं ना थोड़ा सा इग्नोर तो जरूर कर लेते हैं। बॉस आराम तो क्या है भाई, अभी तो कमाने के दिन है, आराम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, भाई क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जिसने कहा है ना जो है आज ही है, बस जरूर सच कहा है कि यार हाँ आज है, हमें आज हमारे गोल्स की तरफ जरूर जाना चाहिए, हमें आज बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये मेहनत करने के लायक जो आपका शरीर है ना, वो तभी काबिल होगा जब आप सही से उसे अटेंशन दोगे। अब भले ही वो आराम के थ्रू हो, या फिर आपके डाइट के थ्रू हो, या फिर आपके वर्कआउट के थ्रू हो, एंड दिस is definitely the need of the hour, I feel. तो बस आज सुबह doesn't really want to be preachy at all. लेकिन क्योंकि हम वीकेंड की तरफ है तो बस यही करूँगी, अगर कम सोते हो तो ज्यादा सो, अगर बैठ के बहुत काम करते हो तो फिर यार चलो फिरो, जाओ वॉक करो, डू सम आउटडोर एक्टिविटी दिस वीकेंड। और अगर पूरा हफ्ता बस जंक खाते रहते हो, बाहर का खाना खाते रहते हो, ऑफिस के शेड्यूल की वजह से यू आर नॉट एबल टू ईट हेल्दी, देन वीकेंड पर कर लो, है ना। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी शुरुआत विद दिस बड़ा बड़ा शो, और अच्छे अच्छे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन
4: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को। बेटे
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: दिल। वेल देखो, आपको फर्क तो महसूस होगा। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं सिंपली आफरीन, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। और देखिए, जैसे ही ये सितंबर का महीना लगा है ना, तो एक फर्क तो जरूर लगा है हमें कि ये उम्मीद तो बहुत है कि वेदर का अच्छा खासा चेंज इस महीने से शुरू होगा। दिस इज ऑफिशियली द ऑटम सीजन ऑफ आर कतर। लेकिन हाँ, दिन के वक्त की बात तो नहीं, लेकिन शाम के वक्त जो पसीने और जो एक अजीब किस्म की ह्यूमिडिटी और गर्माइश थी हमारे मौसम में, वो कहीं ना कहीं कम होते आपको नजर आएगी, नजर नहीं महसूस होगी।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल, आज का वेदर जो है वो कहता है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वेयर एज मिनिमम विल बी 30। एंड दिस इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि इतने दिन से हम 43-44 इस तरह से कह रहे थे, एंड नाउ इट्स फाइनली कम डाउन, एटलीस्ट 3-2 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं कम हुआ है। और बस अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे। सो प्लान्स आपके सेट रखिएगा। बारबेक्यू प्लान्स करना है, आउटडोर पिकनिक करना है, अभी से अपने ग्रुप के ना सारे प्लानिंग शानिंग शुरू कर दीजिए, भले ही आप अब से 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद या अगले महीने करने वाले हो। मीनवाइल, दिस इज सिंपली आफरीन, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

दिन कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा क्योंकि आपका मूड अपने आप बन जाता है ना लिसनिंग टू दीज ब्यूटीफुल ट्रैक्स, जैसे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में बाजीगर और बाजीगर आपने गाना सुना। और बाजीगर से मुझे ध्यान में आ रहा है कि यार कोई भी इवेंट आप देखते हो इतने बड़े पैमाने पर होता है और उसके असली बाजीगर तो कोई और ही होते हैं। वो लोग होते हैं जो बैक स्टेज से पूरा का पूरा इवेंट सेटअप करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप सोच रहे हो कि ये इवेंट्स की बातें कहां से आ गई है, सो वेल इवेंट्स की बातें इस वजह से हो रही है बिकॉज कतर इवेंट शो 2026 करंटली DECC में हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आज तक चलने वाला है। वेल इसका ये सेकेंड एडिशन है बट द स्केल आई मस्ट टेल यू इट्स हैज gone really bigger and exhibition jo hai it's expanded by around 100% and there are 50 plus exhibitors, 30 plus keynotes, panels and workshops and 5000 se zyada delegates hai yahan par. But mujhe iska interesting part ye lagta hai ki this is not really an event for the public, theek hai, ab wo log ke liye hai ye jo is industry se jude hue hai. Basically event industry ke behind the scenes people ka event hai ye, to isme organizers aa gaye, venues aa gaye, agencies ho गई, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हो गए, सप्लायर्स है, डिसीजन मेकर्स, ये सारे आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे एंड डिसीजंस जो भी है, डिस्कशंस जो है वो भी काफी फ्यूचर फोकस्ड है यहाँ पर, जैसे AI टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी, मेगा इवेंट लॉजिस्टिक्स, बेसिकली हाउ द इवेंट ऑफ टुमारो विल एक्चुअली बी क्रिएटेड। सो बस इवेंट इंडस्ट्री के लोग, हूएवर लिसनिंग टू मी, आज का आखिरी दिन है, DECC में आप जा सकते हो एंड श्योर यू गोना गेट सम गुड कनेक्शन और एक अच्छी खासी नेटवर्किंग होगी आपके लिए भी। माइक से दिल तक आफ्टरनून है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची और 90s का नॉस्टैल्जिया जो है उसे बरकरार रखते हुए थोड़ा सा अर्ली 2000 की तरफ आते हैं। केतरी जी का गाना बोले चूड़ियां कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
4: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
5: Only on Mirchi, it's hot.
6: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
7: दाल चावल और अचार ना हो आम का. हाँ, पानी आ गई. स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है. मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची. यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की.
6: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
4: बॉलीवुड बोर्डल.
5: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डल.
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: The Mentalist Suhani Shah

तो गाड़ी में बैठ गए, एसी ऑन कर लिया, विंडोज ऊपर कर लिए, और क्या लगता है कि अब तो आप ऑफिशियली धूप से ब्रेकअप कर लिए हो? ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड एक्चुअली हियर समथिंग आई फाउंड प्रीटी इंटरेस्टिंग. योर कार और ऑफिस विंडो, ये आपको शायद मोस्ट ऑफ द यूवीबी रेस से बचा जरूर सकता है जो सनबर्न करता है. बट ये जो यूवीए रेस होते हैं, दिस कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी विंडो ग्लास एंड यूवी रेज इज एसोसिएटेड विद प्रीमैच्योर स्किन एजिंग एंड एज स्पॉट्स. देखिए, बेसिकली कतर की धूप से बचने के लिए सिर्फ इंडोर्स होना इनफ नहीं होता है, स्पेशली इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ड्राइविंग एंड सिटिंग क्लोज टू द सनी विंडोज एंड ऑल. दिस मेड मी रियलाइज कि स्किन के बारे में ना ऐसी कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं, मानते भी हैं, कहीं ना कहीं फॉलो भी करते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं. सो लेट्स गेट सम क्लैरिटी फ्रॉम समवन हु एक्चुअली नोज द स्किन रादर देन गूगल यूनिवर्सिटी. कमिंग अप इन अ लिटिल व्हाइल, शहर की लड़की सिंपली आफ्टरनून ब्रिंगिंग यू डॉक्टर श्वेता बालाचंद्र राव, स्पेशलिस्ट इन डर्मेटोलॉजी एट किम्स हेल्थ. फ्रॉम द एवरीडे मिस्टेक्स वी अनोइंगली मेक टू पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स और बहुत सारी चीजें, तो स्किन की थोड़ी सेंसिबल बात करेंगे विदाउट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. राइट हियर डॉक्टर श्वेता जॉइनिंग मी सून. यू गॉट स्टे ट्यून विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

वेल मुझे बताइए, आज के जमाने में गुड स्किन किसको नहीं चाहिए। हम सब अंदर के अंदर चाहते हैं कि यार हमारी स्किन भी मस्त ग्लोइंग वाली रहे, एंड कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जनरली अपने स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन आर यू डूइंग इट द राइट वे?

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने ड्रिल मशीन के, सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया
1: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: देखिए मेरे ख्याल में तो स्किन केयर की शॉपिंग करने के लिए भी ना अपने आप में एक अलग डिग्री चाहिए। एक चीज समझते समझते कोई नया ट्रेंड आ जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड देयर आर सो मेनी नेम्स कमिंग अप इन स्किन केयर। रेटिनॉल, विटामिन सी, नियासिनमाइड एंड सो मेनी मोर थिंग्स। इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स होती है एंड सडनली इट फील्स क्वाइट ओवरवेलमिंग एंड ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। सो विथ मी इज डॉक्टर श्वेता फ्रॉम किम्स हेल्थ और जो बताने वाली है हमें कि यू जस्ट हैव टू टेल मी विथ सो मेनी स्किन केयर ट्रेंड्स एंड इंग्रेडिएंट्स लाइक Like I said, retinol and vitamin C and so many things. Different acids also are there. How can someone understand that what their skin actually needs or just go by the trend?
1: Nowadays, it's all influencer-driven market, right. Which is very much going on right now. But what we need right now is evidence-based skincare. That's where your dermatologist comes in. So the dermatologist will tell you the intricacies of your skin and what you need for your skin. Rather than going by the trend, it is better to have a skin care specialist to help you out to use what exactly you need.
0: True that, because I understand and I believe that every skin is different type.
1: Yes.
0: What a layman common, मुझे लगता है कि एक dry skin होता है, एक oily होता है, एक normal skin होती है. If I am right. So to identify your skin type, I think so, not an influencer is going to tell you, but definitely your dermatologist is going to help you with that.
1: Yes, of course.
0: And I think so, the new influencer for skincare has to be your dermatologist.
1: Yeah, let's hope it happens.
0: So right now, definitely, Dr. Shweta, you're influencing quite a lot of people in the right kind, in the right direction for the skincare. And skincare se judi hui aur bhi baatein hum karenge right here on Mirchi. Aap sun rahe ho Afreen ko. Stay tuned with us. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: रेडी
7: रेडी
6: टू लर्न?
7: यस।
6: टू प्ले?
7: एब्सोल्युटली।
6: टू ग्रो?
7: विद मेजराती।
8: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: देखो कतर में रहते हुए हमारी जिंदगी में ना सनशाइन की तो बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सो मच एक्स्ट्रा सनशाइन हमारी स्किन भी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करती है कि नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज हम स्किन केयर के बारे में काफ़ी सारी बात कर रहे हैं. जैसे सनशाइन से मुझे याद आया, सनस्क्रीन को दोस्त बनाइए, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये कहती है डॉक्टर श्वेता बालचंद्र राव, स्पेशलिस्ट इन डर्मेटोलॉजी एट किम्स हेल्थ, जिन्होंने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने का भी तरीका बताया है. मुझे याद है, आई विल टेल यू, 30 मिनट्स बिफोर यू स्टेप आउट एंड रिपीट आफ्टर एवरी 4 आवर्स, सही है?
1: Yes, that's right, that's
0: चलो एक लेसन तो मुझे आ गया है. लेकिन डॉक्टर, वन concern I hear very often and I think a lot of our listeners will relate to this is pigmentation and dark spots, especially when you're living in a place like Qatar where sun exposure is almost a part of everyday life. Pigmentation bhi bahut zyada stubborn ho jati hai. So can pigmentation be treated, and more importantly, what can we do on a daily basis to prevent it getting worse?
1: Okay, so pigmentation and any kind of pigment disorders in the skin is very much treatable in a dermatology setting. We have our chemical peels, our microneedling with mesotherapy, and of course our pico laser, which helps target the pigment within the skin and helps remove the pigmentation from the skin. So this is how we treat it.
0: Okay, so like in on a daily basis, how can we take care of it for getting it worse? Like,
1: okay, so to prevent the pigmentation of the skin, some of the basic things which we can do, of course, as I said, the sunscreen has to be applied if you're going out in sunlight. Don't expose yourself to the 9 to 3 sunlight, okay, from 9 a.m. to 3 p.m. This okay. is the harsh UV radiation which is very harmful for the skin. Other than this, and if there is already a pre-existing pigmentation, of course, we can treat it with the procedures.
0: Yeah. All right. So pigmentation, mere khayal se, is a very common phenomena, especially for the desi skin, jo hai hamari, right?
1: Yeah, it is very sensitive.
0: Very sensitive. So, agar aapko bhi pigmentation ka ye hai, issues hai, so pehle aap to experiment karna band kijiyega. Straight away head to a proper dermat to get the right kind of guidance. हाल तो हमारे साथ में हमें गाइड करने के लिए डॉक्टर श्वेता है, राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। जिंदगी में ये गाना और ये इस तरह से सिचुएशन बहुत बार आता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को। और आज ना हम स्किन केयर के बारे में बातें कर रहे हैं, बिकॉज विथ मी इन स्टूडियो इज डॉक्टर श्वेता, अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड इतनी सारी चीजें हैं ना मार्केट में, पीको लेजर, केमिकल पील्स, हाइड्राफेशियल, माइक्रो नीडलिंग, एंड सोशल मीडिया ना तो हमें कभी कभी इतना ओवरवेल्म कर देता है कि भाई क्या ट्रीटमेंट हमें चूज करना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि हम पहले ट्रीटमेंट चूज कर लेते हैं अपने लिए और फिर बाद में हम डॉक्टर के जाते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है और किसके लिए क्या जरूरी है, प्लीज बताइए डॉक्टर श्वेता।
1: अ कंसिस्टेंट वेल प्लान्ड स्किन केयर रूटीन इज हाफ द वर्क डन। द प्रोसीजर्स विल कम इन ओनली व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज टू द स्किन एंड देयर इज अ स्ट्रक्चरल डैमेज टू द स्किन। सो एज इन फॉर एग्जांपल द पीको लेजर, इफ देयर इज अ पिगमेंटेशन विद इन द स्किन, इट कैन बी टारगेटेड एंड रिमूव्ड। देयर आर वेरियस केमिकल पील्स टू रिमूव द पिगमेंटेशन एज वेल, and also to heal the acne scars. There is something called as yellow peel to remove the pigmentation.
0: All right.
1: And also the retinol peels, it's like an anti-aging peel which can be done. The microneedling, it will help to restructure the scars used for acne. It can also be used as a skin care for rejuvenation, and mainly for acne scars, to restructure the scar fibers and healing of the scars. So each of these procedure has its own indication, and some of it can also be used for maintaining the skin. Yeah.
0: फैंटास्टिक। तो ये देख रहे हो कि अब से आप अगर अभी से ध्यान देंगे आपके स्किन का, तो मेंटेनेंस जो ये बात कही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पता है वक्त के साथ में हमारी स्किन जो है अपने असली रंग दिखाना शुरू करेगी विथ एज, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे हाथ में है,
1: सपोर्ट होना चाहिए,
0: कि थोड़ा सा स्किन को हम हमारा साथ दे। ऑल्सो मेरे ख्याल से बीइंग हाइड्रेटेड ऑल्सो,
1: यस ऑफ कोर्स, ऑन अ डेली बेसिस हाइड्रेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट।
0: सो ऐसे ये बहुत सारी बातें करेंगे एंड आई एम श्योर दिस इज हेल्पिंग यू। एंड अब के भी अगर स्किन केयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, सो यहाँ पर आज तो क्लियर होंगे, पक्की गारंटी है मेरी यानी सिंपली आफ्टरनून की। एंड अलोंग साइड विद मी आई हैव डॉक्टर श्वेता राइट इन ऑन विच इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: Yes, of course. Mirchi Helpline, बताइए.
1: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती.
3: Oh, no.
1: क्या करूं?
2: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं, होटो पे अच्छी लगती है.
4: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़.

0: अच्छा दोस्तों, सच बताऊं कि आपके स्किन केयर शेल्फ पे 10 प्रोडक्ट जरूर होंगे एंड इट माइट लुक क्वाइट इम्प्रेसिव, बट हेल्दी स्किन शायद 10 प्रोडक्ट से नहीं, कुछ सही हैबिट से ही हो सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज विद मी डॉक्टर श्वेता, डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारे साथ, एंड बहुत सी बातें की हुई है सनस्क्रीन का सही इस्तेमाल एंड देन सो मेनी ट्रीटमेंट्स जहां पर पीको लेजर एंड केमिकल पीलिंग एंड ये सारी चीजें, लेकिन डॉक्टर बिफोर वी रैप अप फॉर द डे आई वॉन्ट टू मेक दिस रियली सिंपल एंड प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन लिसनिंग, ठीक है, बिकॉज रूटीन्स जो है ना ये कॉम्प्लिकेट हो सकती है, प्रोडक्ट्स इतने चेंज होते हैं, मार्केट में इतने ट्रेंड आते जाते रहते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपको इफ यू हैव टू स्ट्रिप द स्किन केयर डाउन टू जस्ट एसेंशियल्स जो हमारे लिसनर्स है ऑन अ डेली बेसिस बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ये AM PM रूटीन क्या है, ये इफ यू कैन गाइड क्या होगा वो।
1: ओके, सो 3 हैबिट्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द स्किन। 1 इज जेंटल एक्सफोलिएशन एंड नॉट ओवर एक्सफोलिएशन, अ मॉइस्चराइजर व्हिच सूट्स योर स्किन टाइप टू बैलेंस द ऑयल्स इन द स्किन, and of course a sunscreen. This is for your skincare routine, but a very underrated habit for your skincare is your diet.
0: Okay.
1: So diet is very very important when it comes to skincare, which is a well balanced diet rich in antioxidants, rich in beta carotene, and also another underrated habit is exercise. Exercise makes your skin glow. Exercise builds the collagen in the skin. Exercise delays aging of the skin. So the underrated habit is your well-balanced diet and exercise.
0: Correct. Regarding diet, here I would like to ask you, what are those like food items which is good for skin? ये बहुत, ये myth तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत हमने देखा है कि Bengalis जो होते हैं उनकी skin बहुत अच्छी होती है, but is it true that because of their diet उनका fish के वजह से है, या can you put some light on it?
1: Yes, fish very much so, because it is rich in omega-3 fatty acids and this helps hydrate the skin. It also delays the aging of the skin. So of course, yeah, there is some reason to it that they are so beautiful.
0: तो देख लीजिए भाई, सिर्फ आपके जो पैसे हैं स्किन केयर के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पर डालना जरूरी नहीं है, ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट पर, बट ऑल्सो योर डाइट। लेकिन हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट है यहाँ पर फॉर ऑल योर डाउट्स एंड फॉर ऑल योर ग्लो यू वांटेड इन योर लाइफ, कि अगर चलो जिंदगी में कहीं और से ग्लो नहीं तो आपकी स्किन से तो जरूर आ सकता है। मैं हूँ आफरीन एंड डॉक्टर श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। चलिए डॉक्टर श्वेता यहाँ पर लेती है अलविदा। Thank you so much for joining again.
1: Thank you so much, Afreen, for having me here.
0: Thank you. आप बने रहिएगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। Right here on Mirchi, it's hot.

0: Mix.
1: Mirci.
0: Mirci.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vizba la burka. Mirci, burka.
3: Hello.
4: Hello.
3: हेलो
4: हाँ
3: बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: ओए यार आपके टॉयलेट पे अभी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अभी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकड़ुकू
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
3: कुकड़ुकू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
9: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Well, सुनी थी चौहान और दिव्या कुमार की आवाज में ये लवली गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:20 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और वक्त कहीं और भी इशारा कर रही है, अब सीधा आफरीन लोगों के फायदे की बात कर ले। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज के एक्सचेंज रेट पर चलिए जरा नजर डालते हैं। वेल, एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 25.90, नीचे हो गया है। ओके, वहीं पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.16, बांग्लादेशी टाका जो है वो हो गया है 33.68 पर, श्रीलंकन रुपीस की अगर बात करें तो इट इज एट 90.04 और नेपाली रुपीस की अगर बात करें देन इट इज एट 41.53। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन 89.6 मिर्ची वन। अस माइक से दिल तक आफरीन के साथ प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक इज आदेश श्रीवास्तव की आवाज और वसुंधरा दास का साथ, एंड आई लव दिस ट्रैक, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ट्रैक आई फील आंखें मूवी से, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: a beautiful track. Aankhe movie se ye gana, which was filmed on Akshay Kumar and a stunning Bipasha Basu. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai right here. Aur it's time ke hum zara gold rates par bhi saath saath zara nazar dal de. Gold update. वेल देखिए आज के जो गोल्ड अपडेट है वो ये कहते हैं कि आपको पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार मिल रहा है 603 रियाल का, वहीं पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार मिल रहा है 2819 रियाल का, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार मिल रहा है आपको 5568 कतरी रियाल का, वेर एज 1 आउंस गोल्ड बार इज फॉर 17217 एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 63948. ये थे आज के गोल्ड रेट्स. तो बस गोल्ड लेना हो ना लेना हो, सोने का भाव हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए और पता रहना चाहिए. मीनवाइल अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए गुरु रंधावा और निकिता गांधी की आवाज में राइट ऑन मिशन एट साथ.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आते हैं।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
3: ओफो, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना है यार। मतलब ये गाने में एक नखरे हैं और अदाएं हैं और एक कॉन्वर्सेशन टाइप, एंड आई थिंक सो ना ये कॉन्वर्सेशन टाइप जो गाने अपने टाइम पर, अपने टाइम मतलब यार 90s के टाइम पे, 2000 के टाइम पे बनते थे, जैसे ए क्या बोलती थू एंड सो मेनी वर्ड ऐसे, नॉट ओनली दिस, वो अब कहाँ होते हैं यार। आई थिंक सो द ट्रेंड ऑफ मोर सोलो सॉन्ग्स आर मोर नाउ, मतलब डुएट का जमाना जो था कहीं ना कहीं कम होकर अभी सिर्फ अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाने हम सुन रहे थे या फिर सिर्फ श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाने सुन रहे थे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसे वन साइडेड होते जा रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज फिर से वक्त हो चला है कि मैं अपना वो खोलूं, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलूं, एंड यस आपके लिए एक चैलेंज लेकर आऊं। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स इज क्वाइट इजी टुडे। आई फील कि मैं एक बस गाना सुनाने वाली हूँ आपको और आपने गेस करना है कि ये कौन सी मूवी से है। प्रोबेबली ये आसान भी हो सकता है एंड प्रोबेबली आप ये भी सोच सकते हो कि यार हाँ सुना है, यस इट इज बैक इन 90s हमने सुना है, लेकिन मूवी याद नहीं आ रही है। सो हियर इट गोज, चलिए आज का गाना खाली सुनते हैं। सिर्फ गाना सुनो और बता दीजिए कौन सी मूवी से है, ठीक है?

सीधे सीधे आपको मैंने गाना बताया है, केके और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना है, इट्स अ डांस नंबर। और कौन सी मूवी से है मुझे वो बताइए, ठीक है? चलिए फिर, 5000 1896 इज माई नंबर, 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर जस्ट टेक्स्ट मैसेज ही छोड़ सकते हैं, लेकिन यार अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, बप्पी दा की आवाज में। यस, बप्पी दा की आवाज में उनका गाना, लेकिन विद अ न्यू ट्विस्ट, आयुष्मान की आवाज के साथ। आई लव दिस ट्रैक एंड द एनर्जी ऑफ दिस सॉन्ग, एब्सोल्युटली एप्ट फॉर द वीकेंड। Enjoy it on Mitchie, it's hot.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
3: Bollywood Boldal.
4: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
7: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
8: दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: are you?
1: मैं अरे मैं तो हाँ जी मैं तो आफरीन ही हूँ आपकी मॉर्निंग को मजेदार बनाने के लिए हर रोज यहाँ पर आती हूँ और बस हर रोज कुछ नई नई चीजें सोचने की कोशिश करती हूँ कि बस आज कुछ ऐसा पेश किया जाए या आज कोई ये नई खबर दे या फिर कोई नया गेम दे। सो वेल मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स अक्सर इस वक्त पर हम खेलते हैं जहाँ पर कुछ नया चैलेंज आपके लिए आता है। Well, आज का चैलेंज वॉज रिलेटिवली वेरी इजी, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि गाने सुनने पर भी ना ध्यान नहीं आता यार कौन सी मूवी से था। बस ऐसे ही कुछ आज मैंने एक गाना सुनाया था, आपने गेस करना था कि विच मूवी इज दिस फ्रॉम, एंड आई थिंक सो यू जस्ट फ्लडेड माय व्हाट्सएप हियर विद ऑल योर आंसर्स। सो वेल लेट्स लिसन टू द ट्रैक फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर आंसर्स।

0: ओके, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के जवाब और यहाँ पर सवाल एंड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन ये मजा आता है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. लेट्स हियर द राइट आंसर फर्स्ट.
1: Hey Afreen, hey. Good morning.
0: Good morning. Here.
1: How are you doing?
0: I'm good, yeah.
1: The song you played from the movie Hamraaz.
0: Okay.
1: Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.
0: All right, that is absolutely right. और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए हैं. यहाँ पर राकेश का मैसेज है, मंसूर का मैसेज है, अहाना का मैसेज है. देन आई हैव प्रिंसन सेइंग द राइट आंसर, ताहिर सेइंग द राइट आंसर, वकास रियाज है, इम्पा का मैसेज है, शहबाज का मैसेज है, निनाद एंड मनोहर, एंड द लिस्ट इज रियली लॉन्ग टुडे. सो वेल, अगर किसी का नाम मिस हो गया होगा तो आई एम सो सॉरी. आपका नाम अगर आपने लिखा नहीं है ना तो मेरे आंखों के सामने से ऐसे मिस हो ही जाता है. विद दिस, जहाँ इस गाने की बात हुई है हमराज, जहाँ अक्षय खन्ना की एक्टिंग, पहली बार उन्होंने ऐसे किरदार निभाया था एज अ विलन, एंड उनको फिल्म फेयर के नॉमिनेशन भी मिले थे. इनफैक्ट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इफ आई एम राइट कि उन्होंने विग पहनना स्टार्ट किया था. सो यस, व्हाट अ फेनोमिनल मूवी दिस वॉज. और एक्टिंग इनफैक्ट अक्षय खन्ना की बहुत तारीफ की गई थी, जहाँ बॉबी देओल और अमीषा पटेल भी थे. एंड परफेक्ट अब्बास मस्तान का वो जो सस्पेंस और थ्रिलर होता है ना, एक टाइम था यार, मज़ा आता था अब्बास मस्तान की मूवीज़ में. सम वेयर वी मिस दैट, आई थिंक सो. ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए. चले फिर के सुनिधि चौहान की आवाज़ में हो जाए ये गाना. इन्जॉय दिस ट्रैक. माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।
2: I'm joking, mama.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिर्ची खरीब का इशारा हो रहा है सुबह के 9:01 की तरफ और मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और रोमी और श्रेया घोषाल की आवाज में ये ब्रांड न्यू ट्रैक आपके लिए ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: Well, a beautiful gana right here on Mirchi this beautiful morning, 3rd of September, Thursday ka din jahan hum sab sari khush rehte hain. और वीकेंड का सबसे बड़ा सवाल क्या है, प्लान्स क्या है, यही होता है ना. नहीं, आज का सवाल है कि भाई देखना क्या है. बिकॉज जनरली ना, जब हम वीकेंड पर रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ जाते हैं, चलो कुछ देख लेते हैं आज टाइम है, तो फिर स्क्रोलिंग में ही ना आधा वीकेंड निकल जाता है और सोच में रह जाते कि भाई देखे क्या. सो वेल, देखते हैं मार्केट में नया क्या है.
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट में नया क्या है.
0: Well, मेरे ओटीटी मार्केट में नया बहुत कुछ है. Well, अगर मूड है, इंटेलिजेंस क्या है, यही होता है ना. नहीं, आज का सवाल है कि भाई देखना क्या है. बिकॉज जनरली ना, जब हम वीकेंड पर रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ जाते हैं, चलो कुछ देख लेते हैं आज टाइम है, तो फिर स्क्रोलिंग में ही ना आधा वीकेंड निकल जाता है और सोच में रह जाते कि भाई देखे क्या. सो वेल, देखते हैं मार्केट में नया क्या है.
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट

थोड़ा दिमाग साइड में रख के बस अगर हंसना है ना तो बस धमाल 4 इज द वन। नेटफ्लिक्स पर ही आ रही है अजय देवगन, रितेश देशमुख, हर्ष द्वारसी, जावेद जाफरी, बेसिकली केओस की पूरी बारात। अगर मूवीज नहीं कुछ लाइट रिलेटेबल घर जैसा कॉन्टेंट देखना है तो बस फैमिली किराना स्टोर सीजन 2। किराना स्टोर पता है ना अपने हर गली में पहले होता ही था, एंड देन दीज सुपर मार्केट्स एंड मॉल टुक ओवर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन यार वो किराना स्टोर की एक अलग ही बात थी, जहाँ पर आपका अकाउंट भी चलता था, जहाँ पर हर किराना स्टोर आपके घर की सारी कहानी जानता था, हर एक मोहल्ले वाले की हर खबर रखता था। सो वेल, उसी को पूरा ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर है ये इनफैक्ट, एंड एवरी फ्राइडे अ न्यू एपिसोड ड्रॉप्स इन। ठीक है, अब और एक चीज़ है, दिस इज माई पर्सनल वॉच लिस्ट। ठीक है, आज जो है वो ट्रेटर सीजन 2 का फिनाले एपिसोड आने वाला है। आई हैव टू से, बहुत टाइम बाद ना किसी रियलिटी शो ने मुझे जेन्युइनली हुक किया है। और दिस इज समथिंग, इफ यू नो द गेम माफिया, एक गेम है वो भी हम खेलते हैं, इफ आई एम टोटली इनटू गेम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो फिर ये जो है ना रियलिटी शो ट्रेटर्स विच गॉट मी हुक्ड फॉर द पास्ट 2-3 वीक्स एंड नाउ इज द फिनाले। अगर आप भी ट्रेटर्स देखते हो तो यू विल गेट माई इमोशंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वेल, घर बैठ के ना काफी इन्वेस्टिगेशन कर लो कि कौन है आज, कौन जीतने वाला है, ये वो एंड ऑल दीज थिंग्स। थ्रिलर बता दिया मैंने, कॉमेडी बता दिया, फैमिली ड्रामा भी बता दिया, रियलिटी शो का कलेश भी बता दिया। तो इस वीकेंड एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट इज एब्सोल्युटली स्टॉक्ड, है ना? आप क्या देखने वाले हो ऐसे? चलिए बताइए मुझे, 5000-1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर। और अगला ना अरिजीत सिंह की आवाज में, वेल ऑल्दो आई लाइक द ओरिजिनल सॉन्ग, लेकिन अरिजीत सिंह हैज आल्सो डन अ फेयर जॉब, है ना?

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
2: Thank you.
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
3: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
2: परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: लगे हुए गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: कच्चा धागा
3: रेस
2: लगा लो
3: दस
2: पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े दस पत्ते तोड़े
2: दस दस दस पत्ते तोड़े
3: हिरण का बच्चा हिरण का बच्चा सब हिरण का बच्चा
2: हिरण का बच्चा
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा
3: तो सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Al Fardhan Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Al Fardhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: बॉम्बे वाइकिंग्स यानी नीरज श्रीधर की आवाज पे ये गाना राइटेड ऑन मिर्ची, आई टोटली रिमेम्बर द वीडियो ऑफ दिस एल्बम। 90s इंडी पॉप का ये गाना था जहां पर रेट्रो, पुराना, एकदम पुराना रेट्रो और नए स्टाइल, ये सब कुछ ये गाने में दिखाया गया था। अ वेरी ब्यूटीफुल डांस वीडियो आई रिमेम्बर क्लियरली। विद दिस आफरीन है आपके साथ और गाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जेम्स की आवाज में गैंगस्टर मूवी का ये गाना, आई एम श्योर इट इज अ फेवरेट ट्रैक ऑफ क्वाइट मेनी लिसनर्स लिसनिंग टू अस। इफ इट इज, जस्ट ड्रॉप इन अ हेलो हाय और जस्ट गिव मी अ शाउट आउट ऑन माय व्हाट्सएप कि हाँ यार आफरीन क्या गाना लगा दिया,
1: भीगी भीगी सी है रातें भीगी,
0: है ना मजे का। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो मुझे लगता है ना, कभी कभार आप लोग ना अपनी कतर को ना थोड़ा सा लाइटली ले लेते हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अपनी दुनिया कतर में, ऑफिस से घर, घर से दोस्त, बस इतनी तक ही है। लेकिन अपेरेंटली कतर इज क्वाइट द डेस्टिनेशन।
1: क्या खबर कतर?
0: देखो खबर ऐसी है दैट देयर फ्रेश नंबर्स फ्रॉम कतर टूरिज्म, जो कहती है 2026 के फर्स्ट 8 मंथ्स में कतर वेलकम्ड अराउंड 2.338 मिलियन विजिटर्स। वाओ, दैट्स अ रियली बिग नंबर। और अगर अगस्त अकेले की बात करें तो 300,000 से ज्यादा विजिटर्स थे, which is actually higher, 6.3% higher than July. और हमें लग रहा था कि भाई जुलाई अगस्त में कतर तो खाली हो गया है, लेकिन yes, there are people who are coming, but कौन है वो लोग जो आ रहे हैं कतर? Well, बता दूं, सबसे बड़ा चंक जो है is from GCC, 41%, but उसके बाद है एशिया एंड ओशेनिया at 20.9%, फिर यूरोप ऑलमोस्ट नेक टू नेक एट 20.8%. yes, there are people from Europe also coming to Qatar. So Qatar का tourist mix is actually becoming pretty diverse. And here's something useful for us living here too. Qatar Tourism now has monthly tourism dashboards to have visitor trends, arrival patterns, even accommodation performance track ki ja sakti hai. Matlab tourism ka pulse literally numbers mein available hai. So well, Qatar bhai, tourism isn't just a travel story anymore for Qatar. It is taking another level and we are so proud of it. Bas aise hi aap bhi apne dosto yaaron ko to kehte hi hoge na ki bhai kahan yaar, Qatar aakar dekho, apne aap mein ek alag duniya hai. मैं तो जरूर करती हूँ। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोड
1: बोल्ड।
2: यार तुमने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है।
9: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snowno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: D'Souza और सुजैन डिमेलो की आवाज में ये गाना। कुछ लोगों से ये बात करके ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के लिए इम्पोर्टेंट लगना बंद हो जाती है ना। लाइफ वही होती है, वही सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, दिमाग में बहुत सारे टैब्स एक साथ खुले होते हैं, बट एक इंसान होता है जिसकी प्रेजेंस समहाउ ऐसा फील कराती है कि हम हमारे दिमाग को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल देते हैं। और शायद आज की शायरी भी मेरी इसी पर है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, नजरों के सामने बंद आंखों का ख्वाब हो तुम, नजरों के सामने बंद आंखों का ख्वाब हो तुम, मेरे हर अनकही सवाल का खूबसूरत जवाब हो तुम, कि तुझको सोचूं तो बस सोचता ही जाऊं, इस बिखरी हुई जिंदगी में सुकून की वो किताब हो तुम। हर एक जिंदगी में कोई तो एक शख्सियत होती है ना जो बहुत सारा सुकून लेकर आती है। और वैसे अगर ये सुनते वक्त किसी का एक का नाम आपके दिमाग में आ गया है ना, तो शायरी अपना काम कर चुकी है। माइक से दिल तक आफ्टरीन है आपके साथ, राइट ऑन मजीद हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
2: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
1: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना दीवाना पागल मेरा दिल जो है, सच में इसकी इमेजिनेशन ना अपरंपार है। और मैं क्या क्या सोचने लग गई ये गाना सुनते सुनते। चलिए मैं आपको अभी आफरीन के इमेजिनरी वर्ल्ड का टूर लेकर जाती हूँ। ये 5 मिनट मैं कहाँ कहाँ चले गई ये गाना सुनते सुनते। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, शाहरुख खान की तरह एक कन्वर्टेबल गाड़ी, यानी ऐसी पूरी खुली खुली गाड़ी में, ऑफकोर्स दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन कतर, लेकिन ऐसे गाड़ी में कोई अपनी एक मनचाही जगह पर ड्राइव करना, उफ व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो वुड इट बी, है ना। मतलब ये गाना बज रहा है और पहाड़ियाँ हैं खूबसूरत सी, आसपास में ब्यूटीफुल ग्रीन अनएंडिंग ग्रीन्स, जहां तक नजर जाए बस वहां तक हरियाली हरियाली है, और सामने जैसे रास्ता जा रहा है ऐसे बर्फीले पहाड़। दिस इज व्हाट आई वाज इमेजिनिंग, एंड मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं कहीं नॉर्वे में कहीं ड्राइव कर रही हूँ। हाय सी, मैंने कहा ना आफरीन की एक इमेजिनरी दुनिया में ले चलती हूँ, और अक्सर ऐसे गानों के साथ या कभी कभार ये दो पल की खुशी जो होती है ये ऐसे मैं चुरा लेती हूँ। वेल टॉकिंग अबाउट दिस, कहीं आपने ऐसे अगर आपको मौका मिले कन्वर्टेबल में इस तरह से जाने का, कोई कन्वर्टेबल कार में ड्राइव करने का, तो वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा लोकेशन होगा जहाँ पर आप ड्राइव करना चाहोगे, मतलब वहाँ के व्यूज और वहाँ की वो खूबसूरती ध्यान में रखते हुए। I would love to listen to your imaginary world as well. मुझे वहाँ पर भी ले चलिए। 5001896 is my number. और बस अब चलते हैं हमारे वीकेंड वाले फेस में। ऑलरेडी आफरीन यू सी इज क्लियरली हैज गॉट द वीकेंड एनर्जी एंड वीकेंड वाइब, और कम्प्लीटली शी इज लॉस्ट इन टू इट के बस अब मुझे आराम करना है, अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए जीना है ये 2 दिन। दिस इज वॉट आई थिंक सो बहुत सारे लोगों का थॉट है कि बस अब ये करना है वो करना है, आराम करेंगे ये देखेंगे इसको मिलेंगे, एंड सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड। डू एवरीथिंग, स्पेंड गुड टाइम विथ योर फैमिली, बिकॉज यार अल्टीमेटली जिसके लिए आप कमा रहे हो ना वो है आपके लिए, खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो बस वक्त वक्त बिताइए उनके साथ, है ना। एंड विद दिस लीविंग दिस शो ऑन अ वेरी हाई नोट, दैट इज इंदी बख्शी और बादशाह आकृति कक्कड़ की आवाज में ये गाना। यस, वीकेंड वाइब्स कंप्लीटली विद दिस सॉन्ग। सैटरडे ऑल दो सैटरडे तक हम मजे करेंगे, है ना। माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची साथ।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

शायद वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही है कि कैसा भी हो बस गुजर जाता है। Hello, very good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड आज वक्त की दास्तान को जरा गौर से देख रही हूँ। बॉस इमेजिन करें कि पूरे एक हफ्ते ऑलमोस्ट पूरे हो भी गए कि बच्चे जो हैं अपने स्कूल के नए सीजन को एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक हफ्ता कैसा गुजरा जिनवनली पता नहीं चला। लेकिन हाँ, अगर ये महसूस करने की बात करें तो उस वक्त जरूर होता था जब दिमाग में ये सवाल आए कि भाई आज लंच बॉक्स में क्या पैक करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन। हैविंग सेड दैट, टाइम जो है बस इसी तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है। पता है क्या, बचपन में अक्सर मेरे पापा मुझसे एक बात कहा करते थे कि वक्त कैसा भी हो बस बीत जाता है, इसलिए अगर बहुत अच्छा हो तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और अगर थोड़ा कम अच्छा हो तो ज्यादा उदास भी नहीं होना, क्योंकि ये जो है फेर बदल जरूर करेगा एंड अपने चक्र को पूरा कर एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे हिसाब से जरूर चलेगा। तो चिट बॉक्स में क्या पैक करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन। हैविंग सेड दैट, टाइम जो है बस इसी तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है। पता है क्या, बचपन में अक्सर मेरे पापा मुझसे एक बात कहा करते थे कि वक्त कैसा भी हो बस बीत जाता है, इसलिए अगर बहुत अच्छा हो तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और अगर थोड़ा कम अच्छा हो तो ज्यादा उदास भी नहीं होना, क्योंकि ये जो है फेर बदल जरूर करेगा एंड अपने चक्र को पूरा करेगा।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत
1: कौन
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। चुप कर ऐसा तूने।
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट। इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
8: The Mentalist Suhani Shah live.

0: जादू के बारे में तो मैंने सुना था, ये बातों से जादू ये कब से होने लगा?
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कह रही हूँ, ये बात जो है ना 101% तय है कि ये गाना इसी के लिए बना है।
1: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन।
0: भाई साहब इतना बता दूं, इसकी नजर जो है ये जरूर एक जादूगरनी की है, बदन का मुझे पता नहीं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अगर मैं किसी की बात कर रही हूँ तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन यानी कि सुहानी शाह। भाई अपनी नजरों से जिस तरह का जादू करती है, अपनी बातों में फंसा कर जिस तरह से आपका जादू बाहर निकालती है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपको आपसे ज्यादा समझती है। जितने राज आपके अंदर छुपे हैं ना, उसे बाहर निकालना बहुत अच्छी तरह से जानती। वेल, सच कह रही हूँ, ऐसे इवेंट्स के बारे में हम जब जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है भाई ये कैसे होता होगा, क्या ही होता होगा। तो चलिए इस मैजिक को लाइव विटनेस करने का वक्त जो है वो आ चला है। सुहानी शाह लाइव इन कतर, 25th of September एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे आप किसी हाल मिस नहीं करना चाहेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए प्लैटिनम लिस्ट पर या तो फिर क्यू टिकट्स स्नूनू सिटी, अपनी टिकट्स को फटाफट से जाकर बुक करें। इस वक्त भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे। एंड सुहानी का इवेंट भाई ये ना देखा तो फिर क्या ही देखा, जाओ जल्दी टिकट्स बुक करो। बाकी आपकी बातें जो है सुहानी से हम निकलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: अच्छी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: बेटा तुम बस अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी सारा काम जो है ना हम संभाल लेंगे।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, बचपन के दिनों में हम सभी ने अपने माँ बाप से ये एक बात तो जरूर सुनी है कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर बस कुछ बन जाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी जो है हम पूरी कर ही लेंगे। तो जहाँ पे एक तरफ यूनिफॉर्म्स रेडी हो चुके हैं, बुक्स रेडी हैं, लंच बॉक्स रेडी है, पेपर वर्क की बात करें तो पेरेंट्स ये काम भी आपके लिए हमने आसान कर ही दिया है। नहीं मैंने नहीं, कहरमा ने, यानी कि कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन ने। बोल इतना बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट जो है एडमिशंस के समय जरूर मांगा जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अकाउंट की लोकेशन को कंफर्म करता है। तो अगर आपको लगे कि इस सर्टिफिकेट की जरूरत है तो कहरमा ने पेरेंट्स को रिमाइंड किया है कि अब इस सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉनिकली कहरमा की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से क्विकली, कन्वीनियंटली एंड परफेक्टली इस सीजन में इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया है जी, तो आपका काम जो है बच रहा है एंड वक्त भी बच रहा है, तो ये जो बचे हुए वक्त में ना अपनी दूसरी ड्यूटी निभाना शुरू कर देना। अरे बच्चों ने आज स्कूल में ढंग से पढ़ाई की या ना की? ना की तो आपकी फिर से पढ़ने की बारी आ गई, उनको पढ़ाने के लिए खुद चुप पढ़ना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का राम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
5: या आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah live.

0: एक बात बताना, क्या आपको आपकी मंजिल मिली?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हम सबकी जिंदगी में ना कोई ऐसा एक डेस्टिनेशन जरूर है जहां पर हमें महसूस होता है कि बस मुझे ना यहाँ पहुंचना है। चाहे इमोशंस की बात करूं, लोगों की बात करूं, करियर की बात करूं या जिंदगी की बात करूं, लेकिन यहां पर असल सवाल ये आता है कि आखिरकार मंजिल होती क्या है? वो जगह जहां पहुंचकर हम कह सकें कि बस अब मिल गया जो मुझे चाहिए था। यार लेकिन बात इतनी है ना कि ये जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। जिस मंजिल के लिए हम सालों भागते हैं, वहां पहुंचकर अक्सर ये महसूस होता है कि यार अभी तो मुझे बहुत कुछ पाना है, मेरी मंजिल तो कुछ और ही है। शायद इसीलिए मंजिल का मतलब सिर्फ कहीं पहुंचना नहीं है, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप कौन बन सके, असल कहानी तो बस यही है। एंड बस इस पे कुछ लिखा है, सुनाती हूं। मंजिल मिले ना मिले सफर याद रखना, गिरकर भी उठने का हौसला बरकरार रखना, रास्ते खुद बताएंगे कहां तक जाना है, बस अपनी आंखों में अपना आसमान बनाए रखना। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब

हॉट है। ये था गुची संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर।

और व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। बस इस सेक्शन में ना बेसब्री से इंतजार होता था कि भाई वो लिख दे जो हम चाहते हैं। आज ना मेरी स्लैम बुक मेरे हाथ में लगी एंड सच कह रही यार, इतने सारे इमोशंस निकल कर बाहर आए कि आज भी हैंडराइटिंग के जरिए मैं पहचान सकी कि भाई ये मेरा कौन सा दोस्त था। क्योंकि तब ना हमें प्रोफाइल पिक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर किसी की हैंडराइटिंग याद होती थी। अरे ये तो रौनक की है, अरे ये तो सोनल की है। क्या दिन थे यार। जनरेशन एंड वक्त कितना बदल चुका है ना। हमारे ज़माने में जो कनेक्ट बना, लेकिन उससे भुला पाना और उसकी बराबरी कर पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कभी कोई स्लैम बुक हुआ करती थी? अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ है ना भाई, तुमने अपने बचपन को जिया है एंड सॉलिड तरह से जिया है। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Mirci, burga. Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज़ साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज़।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: बात सुन,
1: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: देखो एक बात तो तय है कि मेरा काम तो बन गया।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे दोस्त, जब एक ही छत के नीचे 10 चीजें मिल जाए तो भैया लड़कियों का काम ना बने तो फिर किसका काम बने। और ऐसा इंतजाम अगर कहीं हुआ है तो वो है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे लग चुका है मेला यानी कि दोहा ट्रेड फेयर। ये एक ऐसा मेला है जहाँ पे झूला हो ना हो, लेकिन हाय हमारा दिल जो है ना वो जरूर झूल जाता है कि इस स्टॉल की तरफ जाए या दूसरे स्टॉल की तरफ, इधर चला मैं उधर चला। एब्सोल्युटली यार, चाहे मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, एशिया की बात करूँ, जितनी भी प्रोमिनेंट चीजें हैं, खाना पीना हो, डेकोर हो, कपड़े हो, एक्सेसरीज हो, ये सब की सब आपको यहाँ जरूर मिलती हैं। तो भाई इस वीकेंड कहाँ जाना है ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, दैट इज दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर एंड दोहा ट्रेड फेयर का मजे से मजा जो है ना वो उठा के आना है। चलिए जी, अभी फिलहाल मैं जरा कुछ खा पी लूँ, भूख लग गई। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का राम अंशु, एंजॉय।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: में की स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का। हाँ, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
3: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: यार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने कुछ सोचा हो लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा हो?
1: मिर्ची अंशु
0: नहीं मतलब तुमने सोचा था कि आज तो बारिश होगी एंड जरूर होगी, लेकिन नाउजन बादल ने सोचा कि आज तो मैं बिल्कुल भी ना बरसूंगा, लेकिन तुमने सोचा कि आज क्या ही बारिश होगी यार। लेकिन उस दिन बादल ने पूरी प्लानिंग की हो कि तुम्हें तो आज 101% भिगोना है एंड पूरा भिगोना है। भाई साहब तुम जो है ना सॉलिड लेट हो रहे हो, दिल में ख्याल आया कि भैया आज मुझे पूरा सिग्नल ग्रीन मिलेगा, लेकिन ना यार अटका हुआ है, रेड लाइट जो है वो बदल ही ना रही। टेंशन ना लो, अगर लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो ना, तुम्हारी गलती नहीं है, मर्फी बाबा की गलती है, और इसे कहते हैं मर्फीज लॉ। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। इसका सिंपल मतलब यही है कि तुम चाहे जिंदगी में कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, जो होना है जिस तरह से होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन आखिरकार ये लॉ आया कहाँ से? इसके पीछे थे असली मर्फी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्टन एडवर्ड ए मर्फी जूनियर, एक अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर। 1949 में वो एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। एक टेस्ट में इक्विपमेंट जो है वो गलत सेटअप हो गया एंड जिसके चलते पूरा डेटा खराब हो गया। अब बात इतनी थी, उन्होंने पूरी तरह से सोच रखा था कि सब कुछ सही होगा, इवेंचुअली हुआ वही जो होना था। इसीलिए तो लाइफ में ज्यादा सीरियस नहीं होने का, अपना काम करते जाने का, बाकी जो होना है वो तो होके रहेगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

बाकी सारी बातें तो फीकी है। जिंदगी की असल खुशी बस इसी बात में कि जरा सा ज्यादा एक्सचेंज रेट मिल जाए। भाई बॉस जो है बिन बोले कम काम बताए। चलिए दूसरी बात हो ना हो लेकिन पहली बात होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपकी जिंदगी में। फिर भी अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे आईपी मनी में इंडियन रुपीज 25.90, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.17, बांग्लादेशी टाका 33.68, लंकन रुपीज 90.04 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.53। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: क्या सच कह रही हूँ? बेवजह घर वालों ने उछल कूद के नाम से हमें बदनाम किया हुआ है भाई साहब। असल हड़कंप तो इन्होंने मचा रखी। जरा देखिए आज का सोना क्या बोलता है। वेल, अल्फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट्स में अगर आज आप पैंप 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार खरीदना चाहेंगे, सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल 600। साथ ही 5 ग्राम गोल्ड प्राइस एट 2,819 कतरी रियाल, 10 ग्राम प्राइस एट 5,568 कतरी रियाल, एंड इसके साथ ही 1 ounce इज प्राइस एट 17,217 कतरी रियाल। लेकिन अगर मैं बात करूं 10 तोला गोल्ड बार की, सो इट इज प्राइस एट 63,948 कतरी रियाल। जाइए फटाफट से गजब के इन्वेस्टमेंट की तैयारी फिर से शुरू करिए। बाकी ज्वेलरी वगैरह बनाने का प्लान हम देखेंगे, आप बनवाएंगे हम पहनेंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
1: कुकड़ुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
7: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: देखो कतर की सबसे अच्छी बात यह है कि बचपन के दिनों में जिन दीदी भैया को देखकर हम टेलीविजन में खुश हुआ करते थे, आज वो ठीक हमारी आंखों के सामने नजर आते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: बचपन के दिनों में लगता था कि ये विदेशी लोग कैसे लगते होंगे, अरबी कितने सुंदर होते हैं ना, अरे वो यूएस के लोग कितने गोरे होते हैं, जापानी कैसे दिखते हैं। आज जब कतर में आके रहने लगे, इतने सारे कल्चर एंड ट्रेडिशन से रूबरू हुए, तब समझ में आया कि कौन जो है वो कैसे लगता है। तभी तो ठीक अपनी आंखों के सामने हम उन्हें देख पाए, समझ पाए, महसूस हुआ हमसे अलग है लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारी तरह है। तो चलिए एक बार फिर से, कोई तो कल्चर एंड ट्रेडिशन है जिसे और करीब से देखने का मौका मिल ही गया है एक खास एग्जीबिशन के जरिए, जो कि इस वक्त चल रहा है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अरेबियन विमेन एग्जीबिशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेल, रात 10 बजे तक आप ढेर सारी एक्सेसरीज, चीजें, कपड़े, बहुत कुछ देख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ खरीद भी लीजिएगा, अगर लगे कि पहनेंगे कब, टेंशन मत लो, तुम खरीदो, पहनने का काम हम कर लेंगे यार, आफ्टर ऑल इन फ्रेंडशिप शेयरिंग इज केयरिंग। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: देखो तुम खुद भी आना एंड साथ अपनी घर वाली को भी जरूर लेकर आना। पक्की बात है, एक पंत दो काज जो है ना यहाँ पे हो ही जाना है।
1: मिर्ची अंशु।
0: जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बस यही है कि वाइफ्स को अक्सर लगता है कि उनके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानती हैं, एंड हस्बैंड्स को बस यही लगता है कि काश तुम समझ पाती कि मेरे दिमाग में चल रहा है तो क्या ही चल रहा है। अब दोनों के मसले है ना, ये हल करने का मेरे पास एक तरीका है एंड 101% है। तारीख याद रखो 25th of September, जगह भी बता रही हूँ, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। भाई साहब, एक ऐसी बंदी को मैं लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मैरिज की काउंसलिंग भी कर देगी एंड किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सच सच बताकर तुम्हारी जिंदगी में राहत और सुकून जरूर लेकर आएगी। जब दुनिया की सबसे सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की मैं बात करूँ, मैजिशियन की बात करूँ, तो उसमें नाम आता है सुहानी शाह का। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक पंथ दो काज जो है ना वो हो ही जाना है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ ही दिमाग की सारी बातें बाहर आ ही जाएंगे। फटाफट से जाएं क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट या स्नोनू सिटी पर एंड अपनी टिकट्स जो हैं वो बुक करके आएं। एक ऐसा इवेंट जिसे आप किसी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। कतर की हिस्ट्री में पहली बार आपके इंतजार में 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं

0: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
6: 89.6, 89.6.
7: It's hot.

0: देखो कुछ करो या ना करो, लेकिन ये काम आज जरूर करना है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अब देखो ये काम एक ऐसा काम है जो पुराने दौर या जमाने में काफी आसान हुआ करता था, लेकिन आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड में ये काफी डिफिकल्ट हो चुका है। अपने आप को उस हाथ में आए हुए डब्बे से दूर रखना, यानी कि सेलफोन की बात कर रही हूँ। एक वक्त था, एक दौर था, जब छुट्टियों का अगर दिन आए तो पूरे के पूरे घर वाले एक साथ बैठ करना चाहिए कितनी खूबसूरत यादें बस संजो ही लेते थे। कभी कार्ड्स खेलना, कभी कैरम खेलना, कभी अंताक्षरी, नहीं तो पड़ोस की आंटियों के साथ मिलकर अपने अपने घर वालों की खूब चुगली करना। लेकिन लोग जो है आपस में डेफिनेटली कनेक्टेड होते थे। आज के डेट में वीकेंड जब आता है, छुट्टियां भी जब आती हैं, तो हम भी पूरी तरह से सोशली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन घर पे या बाहर पे रियल मायने में कितना सोशलाइज करते हैं, ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस वीकेंड कुछ करें या ना करें, जब भी अपनी फैमिली के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो इंश्योर करें पूरी तरह से सोशल लाइफ से डिसकनेक्ट होते हुए रियल लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करें। इसका जो मजा है ना यार, काफी अलग है। आजमा के देखो, वक्त लगेगा, मुश्किल भी होगी, अंदर से खुजली भी होगी कि एक बार देख लूं एक बार, लेकिन ना कंट्रोल जब कर लिया ना, तो जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। मसलामा हबीबी।

0: दोस्त कुछ शो सिर्फ देखे नहीं जाते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ना चाहते हुए भी आप उनके डायलॉग्स याद रख जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स घर के नाम बन जाते हैं और उनका स्वैग पॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। वेल, मिर्जापुर इज वन सच सीरीज फॉर यू और अब वही भौकाल ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाला है, मिर्जापुर द मूवी के फॉर्म में। एंड टॉकिंग अबाउट द सीरीज, ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहां दोस्ती से ज्यादा पावरफुल थी दुश्मनी और प्यार से ज्यादा डेंजरस था पावर का ऑब्सेशन। कालीन भैया का काम एंड कैलकुलेटेड स्वैग, गुड्डू पंडित का रिवेंज मोड और मुन्ना भैया की अनप्रेडिक्टेबल मैडनेस सबने मिलकर मिर्जापुर को कल्ट बना दिया। और अब जब 3 सीजन्स के बाद इस सीरीज का मूवी वर्जन आ रहा है तो भाई हर दूसरे फैन के अंदर एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर है। और अगर आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े एंड आपसे बोले कि भाई ये लड़की मिर्जापुर की बातें क्यों कर रही है इतनी सारी, देन बाबू मोशाए आज मेरे शो पे होने वाले हैं मिर्ची गिरफ्तार, नन अदर देन द स्टार कास्ट ऑफ मिर्जापुर द मूवी। वेल, उसके अलावा भी बहुत कुछ फिल्मी होने वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ आपके साथ आपकी लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। So stay tuned, it's hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: लगे हुए गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट.
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: बोले
2: श्रीवास्तव. बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ नहीं,
2: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, वर्ड ऑफ माउथ जिस लेवल पे काम किया इस मूवी के लिए इज एक्सेप्शनल। मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश की, जो 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। एंड भाई साहब, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ग्रेजुअली मस्त होल्ड बना लिया है। सो अपेरेंटली इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ कमा लिए हैं, और अगर इसी तरीके से इसका रन चलता रहा इन थिएटर्स, देन डेफिनेटली 100 करोड़ का मार्क तो टच कर सकती है ये। अगर आपको पता ना हो तो बताना चाहूंगी, द मूवी इज बेस्ड ऑन नीम करोरी बाबा, एंड द चेरी ऑन द केक इज दैट इसके सीक्वल पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। सीबीएफसी ने रिपोर्टेडली 35 सेकंड्स के इंटीमेट सीन्स कट किए हैं, साथ में 4 जगह की गालियों को म्यूट करने के साथ साथ 6 और अब्यूजेस हटाए हैं। मैं बात कर रही हूँ 4 सितंबर को रिलीज हो रही द मच अवेटेड मिर्जापुर द मूवी की, बाबू मोशाय, जो 3 घंटे 17 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली है। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म दायरा का ट्रेलर इज हियर। इट इज अ क्राइम थ्रिलर जिसमें करीना कपूर खान डीसीपी अजूनी कोहली के रूप में नजर आ रही हैं, अलॉन्ग विद पृथ्वीराज सुकुमारन, और ये भी इस मूवी में एक पुलिस ऑफिसर ही बने हैं। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 18th of September, जिसका बैकड्रॉप है एक रेप और पुलिस एनकाउंटर के साथ साथ लॉ के दायरे। ऑनेस्टली ट्रेलर देख के आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: And it's time to find Mirchi for Lumchi.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप. एंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन लेट मी रिमाइंड, अभी का जो सेशन होता है वो मिर्ची फिल्मची ढूंढने का होता है, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू गो टू माई इंस्टाग्राम एंड डीएम करो अपना नंबर, ताकि मैं आपको कॉल करके ये फिल्मी गेम खेल सकूं. सो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं हिमांशु जी. शुरू करें?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका एक डायलॉग है, चलती है क्या 9 से 12?
2: चलती है क्या 9 से 12? ये तो जुड़वा.
0: ग्रेट. जुड़वा में माला का रोल किसने प्ले किया है?
2: माला का रोल वो करिश्मा कपूर.
0: ग्रेट. करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें वो डांसर बनी है?
2: ये शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित वाली.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: दिल तो पागल है.
0: बहुत ही बढ़िया. दिल तो पागल है में डांस ग्रुप के डायरेक्टर कौन होते हैं?
2: शाहरुख खान.
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो 6 दिन में लड़की इन करवाते हैं?
2: वो सैफ अली खान और प्रीति जिंटा वाली.
0: हाँ हाँ.
2: कल होना हो.
0: बहुत ही बढ़िया. कल होना हो की नैना कौन है?
2: प्रीति जिंटा.
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे बनी है और प्रेग्नेंट हो जाती है?
2: आरजे सेम अगेन सैफ अली खान के साथ है.
0: हाँ. कोई बात नहीं, बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक कंटिन्यू किया है आपने, उसके लिए आपको ये टैग मिलना तो बनता है हिमांशु जी.
1: मिर्ची फिल्मची.
0: सो माय डियर फ्रेंड, अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल. मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर सेंड कीजिए एंड रेस्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है यार कि हर हिंदुस्तानी जो है उसके अंदर एक फिल्मी कीड़ा जरूर छुपा होता है जिसको निकालने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। सो ऑन अ डेली बेसिस मैं यहाँ पे दो मिर्ची फिल्मची ढूंढती हूँ। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं और ये गेम शुरू कर सकूं। आज के गेम की शुरुआत हुई थी हिमांशु जी से, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए कौन है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे?
3: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, किससे बात हो रही है?
3: दिनेश सिंह बात कर रहा हूँ मैम।
0: दिनेश जी, गेम शुरू करें आपके साथ ही आगे।
3: यस मैम, यस।
0: ओके, प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
3: मैम सलाम नमस्ते।
0: बहुत बढ़िया, सलाम नमस्ते के मेल लीड कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में लंगड़ा त्यागी बने हैं?
3: ओमकारा।
0: ओमकारा में करीना के हस्बैंड कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की किस फिल्म में उनका नाम गोपाल है?
3: गोलमाल रिटर्न, गोलमाल मतलब गोलमाल सीरीज है।
0: बहुत बढ़िया, गोलमाल में अंधे दादाजी कौन बने हैं?
3: परेश रावल मैम।
0: परेश रावल की फिल्म जिसमें वो स्टार गराज चलाते हैं?
3: हेरा फेरी। हेरा फेरी।
0: हेरा फेरी में राजू कौन बना है?
3: राजू भैया, अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार को किस फिल्म में डॉन की बहन से प्यार हो जाता है?
3: वेलकम।
0: वेलकम में घोड़े के ऊपर गधे की पेंटिंग कौन बनाता है?
3: मजनू, वो अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो एक दिन के सीएम बने हैं?
3: नायक।
0: नायक में करप्ट सीएम का रोल किसने प्ले किया है?
3: वो अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें वो सिमरन को जिंदगी जीने के लिए बोलते हैं?
3: डीडीएलजे।
0: डीडीएलजे में भाग के ट्रेन कौन पकड़ता है?
3: काजोल। काजोल।
0: काजोल को किस फिल्म में दिखाई नहीं देता?
3: फना।
0: फना में टेररिस्ट कौन बना?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान एलियन किस फिल्म में बने?
3: पीके।
0: पीके में जर्नलिस्ट कौन है?
3: अनुष्का शर्मा।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजा आया आपको?
3: यस मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड था मैम, कब विनर बनूं।
0: तो लीजिए आप विनर बन गए और इसी के साथ आपको ये टैग भी दे देते हैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: सच सच बताना, आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी ऐसे से कुलमुला गया ना इस गेम को सुन के, तो एक काम करो, कल से इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे अभी जाओ और मुझे अपना नंबर भेज दो। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood. Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती।
2: oh, no.
0: क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: बाबू मोशाय, साइज डजंट मैटर यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो मूवीज के साइज की बात कर रही हूँ यार। आप कहाँ जा रहे हो डर्टी माइंड? खैर, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ 20 मिनट मांगूंगी आपसे, क्योंकि आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट मूवीज की बात कर रही हूँ जो 20 मिनट से भी कम ड्यूरेशन के हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वील टॉक अबाउट कृति, नंबर दो पे हम बात करेंगे 10th रेस की, नंबर तीन पे राह, नंबर चार पे रश्क एंड नंबर पांच पे इलायची। सो शुरू करते हैं कृति से, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016, डायरेक्टेड बाय शिरीष कुंदर, और इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे एंड नेहा शर्मा लीड रोल्स में हैं। टॉकिंग अबाउट द मूवी, अगर मैं कहूं कि आपके थॉट्स ही आपको रिसीव करते हैं तो सो बेसिकली ये फिल्म आपको एक चीज पे विश्वास करने पे मजबूर कर देगी जब तक इसका अंत नहीं देखोगे आप। सो साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर अगर पसंद है आपको, देन बकल अप बाबू मोशाय, क्योंकि ये फिल्म आपको अलग लेवल पे लेकर जाएगी। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी चार ऐसी फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La hirva la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो आपके ही 20 मिनट की बात कर रही हूँ यार बाबा मोशाय, क्योंकि आपको ही आजकल टाइम नहीं होता ना कि आप अपने एंटरटेनमेंट का ध्यान रख पाए। तो बस पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आज कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द मूवी कृति। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट 10th रेस। भाई साहब, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011, डायरेक्टेड बाय गौरव मिश्रा, जिसमें राहुल बग्गा, नीरज शर्मा, उल्हास और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में हैं। इट इज अ ग्रिपिंग टेल ऑफ हाई स्टेक्स रिस्क, जिसमें रेजर शार्प स्ट्रेटजी है, एस्केलेटिंग क्राइम है और इस सब को लीड कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी। सो बेसिकली मूवी में चार लोगों का परफेक्ट क्राइम अटेम्प्ट करने का प्लान है और इनका ये फ्लॉलेस प्लान तब तक मस्त होता है जब तक ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता। अ मस्ट वॉच एज ऑफ योर सीट थ्रिलर जो आपको अपनी लिस्ट में ऐड जरूर करना चाहिए। मूविंग ऑन नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट राह। वेल, दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय प्रतीक पयोधी और इस मूवी में स्वर्णिमा तेलांग और ऋषि वर्मा लीड रोल्स में हैं। सो बेसिकली दिस मूवी फॉलोज टू स्ट्रेंजर्स जो एक कार राइड पे जाते हैं और दोनों के मस्त डार्क सीक्रेट्स हैं। माइंड यू, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर, लेकिन कौन, ये जानने के लिए आपको मूवी के अंत तक पहुंचना ही पड़ेगा। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल्ड टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। श्रुति आपके साथ है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मजा दे जाती हैं।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: एक्सक्यूज मी डर्टी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं शॉर्ट फिल्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको अलग लेवल का मजा दे जाएंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, नंबर दो पे हमने बात किया 10th रेस के बारे में, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट राह, अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट रश्क। ये मूवी रिलीज हुई थी इंडिया 2020, डायरेक्टेड बाय राजीव वालिया, जिसमें भुवन अरोड़ा, पूजा भामरा, पलक पुरस्वानी एंड श्रीश शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी इस फिल्म को देखने के पहले प्रिपेयर फॉर अ सीरियस माइंड गेम, हाँ, क्योंकि ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ बिजनेसमैन जिसके ऊपर अपनी वाइफ को मारने का इल्जाम लगा है। वेल, एज ही नरेट्स हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो सच्चाई है उसमें काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर पांच पे, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इलायची, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय देवशीष मखीजा, जिसमें विभा छिब्बर, निमृत कौर और दिव्येंदु शर्मा हैं। वेल, इमेजिन करो बीइंग स्टक विद समवन फॉर एवर एंड एवर। सो बेसिकली ये मूवी एक डार्कली कॉमिक येट चिलिंग टेल है ऑफ अ हस्बैंड जो अपनी वाइफ को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, इवन आफ्टर डेथ, माइंड यू। बाकी फिल्म में निमृत कौर की फ्रस्ट्रेशन इज ऑल टू रियल एंड द एंडिंग, भाई साहब, अनफॉरगेटेबल एंड हॉन्टिंग। नहीं देखी फिल्म तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको जरूर डालना। बाकी मेरे इस लिस्ट में और भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्म ऐड करना चाहो, देन प्लीज डू दैट, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, वर्ड ऑफ माउथ जिस लेवल पे काम किया इस मूवी के लिए इज एक्सेप्शनल। मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश की, जो 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। एंड भाई साहब, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ग्रेजुअली मस्त होल्ड बना लिया है। सो अपेरेंटली इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ कमा लिए हैं, और अगर इसी तरीके से इसका रन चलता रहा इन थिएटर्स, देन डेफिनेटली 100 करोड़ का मार्क तो टच कर सकती है ये। अगर आपको पता ना हो तो बताना चाहूंगी, द मूवी इज बेस्ड ऑन नीम करोरी बाबा एंड द चेरी ऑन द केक इज दैट इसके सीक्वल पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। CBFC ने रिपोर्टेडली 35 सेकेंड्स के इंटीमेट सीन्स कट किए हैं, साथ में 4 जगह की गालियों को म्यूट करने के साथ साथ 6 और अब्यूजेस हटाए हैं। मैं बात कर रही हूँ 4 सितंबर को रिलीज हो रही द मच अवेटेड मिर्जापुर द मूवी की, बाबू मोशाय, जो 3 घंटे 17 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली है। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म दायरा का ट्रेलर इज हियर। इट इज अ क्राइम थ्रिलर जिसमें करीना कपूर खान DCP अजूनी कोहली के रूप में नजर आ रही हैं, अलॉन्ग विद पृथ्वीराज सुकुमारन, और ये भी इस मूवी में एक पुलिस ऑफिसर ही बने हैं। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 18th ऑफ सितंबर, जिसका बैकड्रॉप है एक रेप और पुलिस एनकाउंटर के साथ साथ लॉ के दायरे। ऑनेस्टली ट्रेलर देख के आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
2: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
1: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
6: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
4: उसे सब पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।
2: I'm joking. Mamma mia, come on.
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

एक ऐसी फिल्म जो मात्र 40 दिनों में शूट हो गई। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। हाँ हाँ, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी दम लगा के हईशा, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में बाबू मोशाय, डायरेक्टेड बाय शरद कटारिया। और इसी फिल्म के साथ भूमि पेडनेकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। वहीं उनके ऑपोजिट नजर आए थे मेल लीड के तौर पे नन अदर देन आयुष्मान खुराना। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला, ये फिल्म मात्र 40 दिनों में शूट हो गई थी। इनफैक्ट इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है ना, इसके रिलीज के 7 साल पहले ही लिख ली गई थी, बोले तो साल 2007 में ही। और तो और, फिल्म के लीड रोल के लिए 100 से भी ज्यादा महिलाओं ने ऑडिशन दिया था, उसमें से हमारी भूमि पेडनेकर वॉज सिलेक्टेड। और इस फिल्म के लिए उन्होंने 15 किलो से ज्यादा वेट पुट ऑन किया था। और बताओ, आज के डेट में जब इस बंदी ने वेट लूज कर लिया है तो उसके लिए भी इनको ट्रोल किया जाता है कि अरे अपने रिब्स हटवा लिए हैं या फिर दवाई खा के अपने आप को पतला कर रही है। मतलब एक महिला की जिंदगी किसी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकती हमारे यहाँ, इज वॉट आई हैव नोन विद माई ओन एक्सपीरियंसिस एज वेल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

भी किसी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकती हमारे यहाँ, इज वॉट आई हैव नोन विद माई ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello. Hello.
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: मैं तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए
4: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
4: मेरी बात सुन,
3: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
4: मेरी बात सुन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ।

0: मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
1: अब ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
4: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: फिदा हम
1: कसम से बादल देख के मैं तो मोर बन जाती हूँ।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
1: ये गलत गलत डायरेक्शन में आपके थॉट्स क्यों चले जाते हैं यार, हर बार लगातार बार बार गलत है, ये गलत है। ओके चलिए, मैं बात कर रही हूँ बारिश में पाए जाने वाले दो कैटेगरी ऑफ पीपल की, बेसिकली बारिश लवर्स की, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो बिल्कुल मेरे जैसा है, एकदम से बारिश पगलू, मतलब बादल दिखे नहीं कि इनके अंदर का मोर जाग जाता है और ये जलबिन मछली भी बन जाते हैं, और उसके बाद तो भाई समोसे भी खाने हैं, पकौड़े भी खाने हैं, चाय भी पीनी है, और बारिश में अगर भीगने का मौका मिल गया तो ओहो RSTDM का वो लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन ही रिक्रिएट करना है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ बारिश लवर्स हैं, OMG, भगवान ने क्यों ही इनके अंदर ये बारिश प्रेम भरा है, क्योंकि भाई इनको ना बारिश दूर से पसंद है, मतलब अगर बाहर बारिश हो रही है, ये अंदर बैठे हो कंफर्टेबल अपने घर पे और गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ साथ चाय की चुस्की मार रहे हो, तब तक ही बारिश अच्छी लगती है। अगर इनके बालकनी में थोड़ी गंदगी हो गई तो इरिटेट हो जाएंगे, अगर इनको बारिश में कहीं निकलने को बोल दिया जाए तो इरिटेट हो जाएंगे, ऐसे किचकिच किचकिच वाली फीलिंग आ जाती है इनको। तो बताइए फिर, आप इन दोनों में से कौन से पगलू हैं? श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: दोस्त कुछ शो सिर्फ देखे नहीं जाते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ना चाहते हुए भी आप उनके डायलॉग्स याद रख जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स घर के नाम बन जाते हैं और उनका स्वैग पॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। वेल, मिर्जापुर इज वन सच सीरीज फॉर यू और अब वही भौकाल ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाला है, मिर्जापुर द मूवी के फॉर्म में। एंड टॉकिंग अबाउट द सीरीज, ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहां दोस्ती से ज्यादा पावरफुल थी दुश्मनी और प्यार से ज्यादा डेंजरस था पावर का ऑब्सेशन। कालीन भैया का काम एंड कैलकुलेटेड स्वैग, गुड्डू पंडित का रिवेंज मोड और मुन्ना भैया की अनप्रेडिक्टेबल मैडनेस, सबने मिलकर मिर्जापुर को कल्ट बना दिया। और अब जब 3 सीजन के बाद इस सीरीज का मूवी वर्जन आ रहा है तो भाई हर दूसरे फैन के अंदर एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर है। इसलिए आज मेरे शो पे मिर्ची गिरफ्तार हैं इसी मूवी के स्टार कास्ट, विच इंक्लूड्स अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल एंड श्रेया पिलगांवकर जैसे स्टार्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स कंटिन्यू।
3: बरखुरदार आप हो गए हैं मिर्ची गिरफ्तार, मिर्ची गिरफ्तार।
0: हाय गाइस, क्या चल रहा है, कैसे हो?
4: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया, बस एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पूरी टीम के लिए। सो क्या चल रहा है, कैसा फील हो रहा है ट्रेलर को लेकर या मूवी जो आने वाली है उसको लेकर?
5: गिनती
6: यार, अभी हम एक्चुअली सच बताएं आपको, हम काफी खुश हैं क्योंकि लोगों ने इतना मजेदार तरीके से रिसीव किया है ना ट्रेलर को। उससे पहले शायद थोड़ा सा था कि कैसे ट्रेलर देखेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि शायद ठीक ठाक पसंद आ गया है लोगों, तो आई थिंक थोड़ा रिलीफ है।
0: आपको रिलीफ है बट ऑडियंस के बीच में बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी पड़ी है। इनफैक्ट इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी है बट उसके बारे में हम आपसे जरूर जानेंगे, उसकी क्लैरिटी लेंगे इन अ व्हाइल। अभी के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और आज मेरे शो पे है मिर्ची गिरफ्तार, मिर्जापुर द मूवी की स्टार कास्ट। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC। एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: किसी और के लिए स्टैंड लेना छोड़ो, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आई अग्री बहुत सारे लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ लिया होगा मेरे इस स्टेटमेंट को सुन के कि अरे ऐसे कैसे श्रुति अपने लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लेगा। लेकिन नहीं बाबू मोशाय, हर इंसान मेरे और आपके जैसे स्ट्रांग नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए भी किसी के सामने आवाज नहीं उठा पाते। बस उसी चीज को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर्स ने जब अपने लिए वो करेज दिखाया है, अपने लिए स्टैंड लिया है, तो वो मोमेंट आहा मजेदार हो गया है। सो लेट्स रिज्यूम द पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी तमाशा। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई दो, जिसमें राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है, शार्दुल का कैरेक्टर, वो जब अपनी आइडेंटिटी को लेकर लोगों के सामने आता है, बेसिकली अपनी फैमिली के सामने जब वो रिवील करता है कि वो एक गे है, दैट बाबू मोशाय इज द मोमेंट ऑफ करेज इन द मूवी। इनफैक्ट उस चीज के बाद जिस तरीके से शार्दुल की माँ उसको हक करती है इज रियली ओवरवेलमिंग। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें ये भी समझाती है कि आप अपने लिए जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक सामने वाला तो बहरा ही बैठा रहेगा। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द मूवी थप्पड़ ऑन नंबर 3, जिसमें तापसी पन्नू के कैरेक्टर अमृता की बात करना चाहूंगी। वेल ये फिल्म दिखाती है दैट कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एक औरत को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी पत्नी अच्छी वाइफ बनने के प्रोसेस में बंदी अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस को सैक्रिफाइस कर देती है, और फिर प्रेग्नेंट होने के बावजूद अमृता का डिवोर्स पेपर साइन करना दिखाता है कि वो खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करती है। एंड दैट माय डियर इज डेफिनेटली अ लाइफ लेसन। खैर मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow Nu। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah, live

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूँ?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: वैसे गर्मी और हमारा रिश्ता भी पुराना है। अरे याद है छोटी छोटी बातों पे जब आप गर्म हो जाते थे, अब मौसम आपको और गर्मी प्रदान कर रहा है। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 4:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: फिलहाल अब गर्मी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग की गर्मी शांत करने के लिए ठंडा पानी पी लिया करो यार। दो बातें किसी की सुनकर अगर जवाब नहीं दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, सामने वाला लेकिन ये समझ जाएगा कि यार इसने कुछ बोला नहीं, कुछ और प्लान तो नहीं कर रहा है। इसलिए अच्छी बुद्धिमता यही है कि जब सामने वाला कोई गर्मी दिखाए तो आप नरम हो जाए। जैसे सूरज चाचू दिखा रहे हैं, हम तुरंत पानी पी के खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो एक दिन तो चले ही जाएंगे इतनी गर्मी देकर हम लोगों को। इन सब के बीच आपको किसी भी पब्लिक इवेंट में अगर कतर में जाना है तो अपनी कतर आईडी अपने साथ रखनी है। क्यों रखनी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इस पर मैं अब थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से सामने आई है, एंड मैं चाहता हूं कि आप इस बात को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें। 89.6 मिर्ची 1 शाम शानदार की शुरुआत मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta a la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो, कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: पूछे घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या?
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: मोबाइल अपने साथ लेकर चलते हो ना तो फिर कतर आईडी भी रखो। 89.6 जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमसे एक बात अर्ज की है।
1: #974
0: हमारे पास हमारी जो वैलिड कतर आईडी है वो हमेशा होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर विजिटिंग एनी पब्लिक प्लेसेस, वो हमारे साथ रहनी चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, ऊपर वाला ना करे अगर एक्सीडेंट आ गई सिचुएशन या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर आपकी क्विक आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो आपकी ओरिजिनल कतर आईडी काम आती है या फिर आपके डिजिटल कॉपी जो आपके साथ आपके मोबाइल में रहती है। वैसे आईडी ना होने पर भी प्रोसीजर है, अगर क्यूआईडी नहीं है तो फिंगरप्रिंट से ही आपकी आइडेंटिटी तो चेक हो जाती है और वेरिफिकेशन होने पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रेफर भी किया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि कोशिश यही करिए आप हमेशा अपनी वैलिड कतर आईडी अपने पास रखिए। आपको अक्सर सिविलियन क्लोथ में पुलिस ऑफिसर मिलेंगे, हालांकि वो खुद को पुलिस ऑफिसर अगर बताएं तो पहले आप उनसे पुलिस आईडी कार्ड मांगिए। ऐसे ही अपनी कोई जानकारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर मत कीजिए। पुलिस आईडी की पहचान है जेन्युइन पुलिस आईडी, बिल्कुल क्यूआईडी जैसी ही दिखती है जिसमें ऑफिसर का नाम होता है, फोटो होती है, डिपार्टमेंट होता है, बैक साइड पर एमओआई की डिटेल्स होती है। और फेक ऑफिसर कोई भी दिखाई दे तो आप तुरंत 999 पर कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, पुलिस आईडी जैसे दिखाने से कोई मना कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं यहाँ तो मामला संजीदा है, तुरंत आप 999 पर फोन करिए एंड बस अल्फाजा पुलिस 24/7 आपके सिक्योरिटी आपके असिस्टेंस के लिए है। थैंक यू सो मच अल्फाजा। यार इसीलिए तो हम कतर में इतना सेफ फील करते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ एकदम सही चल रहा है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कभी कभी ना बातें जो है समझाने से नहीं समझ में आती, उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि कभी कभी कोई बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप समझा कर कुछ नहीं कर पाते हो, कभी कभी अपने छोटे से एक्शन से आप चीजें अच्छी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपसे वो रूठी हुई है तो आप उनके लिए गोल्ड बार खरीद दो।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर राइट नाउ बात करें तो यस, अल फरदान एक्सचेंज के पैम्प गोल्ड रेट्स की बात करते हैं। एंड पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 600 एग्जैक्ट कतारी रियाल के मिल रहे हैं। पैम्प 5 ग्राम इज 2819 कतारी रियाल। पैम्प 10 ग्राम इज 5568 कतारी रियाल। वहीं 1 ounce गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलने वाला है 17217 कतारी रियाल में। एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार यानी कि 10 तोला 63,948 कतारी रियाल। वेल, ये बताना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में ना हम सब सेविंग्स करते हैं, लेकिन वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत पुराने टाइम से जो चला आ रहा है वो यही गोल्ड है। 89.6 मिर्ची 1 पर अल फरदान गोल्ड एक्सचेंज रेट मिर्ची सॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ। Well, just

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: रेडी
7: रेडी
6: टू लर्न?
7: यस।
6: टू प्ले?
7: एब्सोल्युटली।
6: टू ग्रो?
7: विद मेजराती।
8: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
10: 89.6
5: It's hot.

0: मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा, हमारे कतर में चलती है सब तरफ सैयारा। वेल सैयारा यहाँ पर तो ट्रैवलर के रूप में बोला जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ अरब में आपको पता ही होगा गाड़ी मतलब वैन, सैयारा वैन सैयारा, जो अरबिक पीपल जब बोले तो समझ जाए कहाँ है कार कहाँ है कार। वेल सैयारा से याद आया कि भाई गाना तो सुन लिया, लेकिन फिलहाल गर्मी में अगर कोई सैयारा बन के रेतों में घूमे तो बेहोशी जल्दी छाएगी।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: आज बड़े दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि अब चीजें बेहतर होंगी मेरा, लेकिन काली जबान जो है ना उसके बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करते। फिलहाल दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आज पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस, दिन का मिनिमम विल बी 31। बड़ी बात यह है कि हवाओं की रफ्तार आज कुछ कम हुई है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास चलती हवाएं, लेकिन 37% ह्यूमिडिटी अगर शाम होते होते तक बढ़ती है तो पानी पीने की जरूरत पड़ती है। कीप हाइड्रेटिंग योर बॉडी, कीप ड्रिंकिंग, लेकिन धीरे धीरे हर दिन के साथ टेम्परेचर नीचे जाएगा, यही दुआ हमको और आपको मिलकर करनी है। तभी तो अच्छे वेदर का मजा लेंगे जब बीच पे जा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, लेट नाइट तक पार्टीज कर रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं तो बस हवाएं, पार्क में पिकनिक, पॉटलक पार्टीज, यही सब होगा 1.5 महीने की और बात दोस्त। मिर्ची थॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah. Live.

0: गाना खत्म हुआ माशू का और आपके साथ आ गया आपका आशिक नाम है। फिलहाल आपके साथ घड़ी का टाइम बताने के बारी 5:03 के आसपास का टाइम चल रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब टीचर और स्टूडेंट दोस्त से कम थोड़े होंगे। 89.6 पर मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहता है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो यूं तो वो प्यार भरा ही है, लेकिन बैक इन आवर डेज हम जब शैतानी करते थे तो पिटाई भी होती थी, लेकिन अब दौर बदल गया है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने एक अनाउंसमेंट कर दी है, सर्कुलर रिलीज कर दिया है और किसी भी तरह की पनिशमेंट से मना कर दिया है। यस, हम आपको बता दें इस सर्कुलर को रिलीज कर सारे पब्लिक स्कूल के टीचर्स को स्टाफ मेंबर्स को बता दिया गया है कि एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल वर्बल या फिर मेंटल पनिशमेंट स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है। आपको बता दूं अब किसी तरह की कोई पनिशमेंट बच्चों को नहीं मिलेगी और आइडिया इसके पीछे यही है कि क्लास की जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ही सेफ लगे, बच्चों को टीचर्स सपोर्टिव मिलने चाहिए और काफी रिस्पेक्टफुल माहौल बना रहे, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं कहता हूं सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो एक साइड की बात है, बट आई एम श्योर वेरी श्योर इसके साथ अब स्टूडेंट्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बेसिक रूल्स को फॉलो करें और क्लास में किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं होगा। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, ये लाइन तो हर टीचर की होती थी। वैसे फिलहाल इतना ही कहूंगा यार, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का बॉन्ड एकदम अलग होता है। हमारे दौर में तो ऐसा था भैया, जो टीचर सबसे ज्यादा मारते थे अगर वो एक दिन प्यार कर दे तो ऐसा लगता कि दुनिया अदल बदल गई, सूरज आज पश्चिम से उगा है। इस उम्मीद में कि आप जीवन भर पढ़ाई करते हुए अपने टीचर्स को हर बार रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोलेंगे, मस्तमौला गौरव आगे बढ़ता है। और बता दूं इतने सालों के बाद भी मुझे अपने हर क्लास की क्लास टीचर का नाम याद है, ये बताता है कि क्या बॉन्ड था इतना मार खाने के बावजूद। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: लगे हुए गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो, कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े,
2: तोड़े,
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले।
3: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कुछ नहीं,
3: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
5: it's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

वैसे मैं भी यही कहूंगा कि जब बात करें तो पहली से पांचवी तारीख के बीच खर्चों के शेर तो मेरे भी खुलते हैं। वैसे हमें से ज्यादातर लोगों का यही होता है भाई, जैसे ही सैलरी आई हम फील करते हैं राजा टाइप्स, एंड उसके बाद 10 दिन होते ही हम तुरंत रंक टाइप बनकर लोगों से पैसे मांगते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो घर बेच कर आप अपने लिए और बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। आईपीपे राइट नाउ आपको मिलेंगे एक कतरे रियाल के बदले इंडियन रुपीस 25.89, 25.89 रुपए मिलने भारतीय मुद्रा में। इसके अलावा बात करें श्रीलंकन रुपीस की अगेंस्ट 1 कतरे रियाल 90.05। अगर हम पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.17 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट आज 41.33 का रेट छाई हाँ जी 41.33 को नेपाली रुपीज का रेट। और इसके बाद बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा, एकटा कतरे रियाल दे 33.67 तो हाँ जी 33.67 हेक्टर रेट आते तो बांग्लादेशी टाका चले तो मस्त मोलो गौरव के साथ। ये था आईपी एक्सचेंज रेट मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मैं ना एक लड़की के लिए इस गाने को थोड़ा बदलता हूँ। ये लड़की है सुहानी है सयानी,
1: मस्त मौला मस्त मौला गौरव मस्त मौला गौरव।
0: यस, बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली दी मेंटलेस वानिशा कमिंग टू कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। और तैयार हैं हम भी इनके इस्तकबाल को, अपने अपनी तरह से सब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे ये हमारे माइंड को रेडी ना कर पाए, लेकिन ट्रस्ट मी शी इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और हमारी जब पूरी टीम हम लोग बैठे थे उस दिन, तो हम यही बात करते कि यार करती कैसे है ये बंदी। इनफैक्ट हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं पर नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे। सुहानी से कुछ तो सीखना पड़ेगा, हम उसे प्रॉमिस कराएंगे कि सुहानी जब आप आएंगे तो हमें एक छोटा ट्रिक तो सिखाइएगा कि कम से कम किसी महफिल में जाए तो बोल दे रहे यार सुहानी आई थी ना, तो हम लोगों से स्पेशल एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन करके हम बताया था। लेकिन फिलहाल रूबरू होकर उनकी ये सारे मैजिक को देखना है, इनकी सारी ट्रिक्स को देखना है, माइंड रीडिंग के इस पूरे आर्ट को देखना है, तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी भी लीडिंग प्लेटफॉर्म टिकट पर जाइए, जहां पर आपको टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर ये टिकट मिले जल्दी से बुक कीजिए। एस सिटी स्नूनू पर आपको फायदा होने वाला है। एंड इतने नहीं, कॉर्पोरेट्स एंड एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। ये सब कुछ मिर्ची पर आपको मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए एस सिटी स्नूनू पर 30 कतारी रियाल का कैशबैक, उसका फायदा उठाइए इस वीकेंड। बैठ कर दोस्तों यार के साथ प्लान फिक्स कर जितने लोग हैं सबकी टिकट्स बुक कर लो भाई। आई एम टेलिंग यू इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो इससे पहले आपको कभी नहीं मिला है। यस, द मेंटलिस्ट वानिशा लाइव इन कतर। एंड बस इतना ही कहना चाहता हूं, एक ऐसी खूबसूरत महफिल जो गाने और डांस से भी सजेगी, क्योंकि सिंगर चरण आसी डांस करेंगी एंड आई एम श्योर ये कमाल की शाम होगी। 25th ऑफ सितंबर सबको याद रहेगी, 22 दिन दूर खड़े हम। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव ने याद दिला दिया है, आप अपना काम कर लो। के साहब अपना काम करने आए हैं, प्यार के पल मिर्ची इट्स हॉट।

You study, man. Good numbers will follow. 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है एंड रवि किशन जी स्टाइल में यू जस्ट स्टडी मैन गुड नंबर विल फॉलो यू। हाँ जी, क्योंकि मेरा ये मानना है पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो नंबर्स अपने आप अच्छे आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वेल, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो लगा था कि बैक टू स्कूल की तैयारियां कर रहे हैं और देखते देखते 5 दिन कैसे बीत कर ये वीकेंड आ गया, यही मैं सोच रहा हूँ। तो बस बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, टीचर्स की रिस्पेक्ट जरूर करो क्योंकि टीचर्स डे भी आ रहा है। 5th of September को हम इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं। ऐसे में इतना ही कहूंगा यार, टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में क्योंकि हम जो भी हैं आज उसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है और इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम टीचर की रिस्पेक्ट करें। मैं आपको यह कह रहा था कि मुझे अपने एक एक टीचर्स के नाम याद है। क्लासरूम में मेरी रीटा मैम थी, उससे पहले संगमित्रा मिस थी, उसके पहले भारती मैम थी एंड ये मैं लोअर केजी अपर केजी की टीचर बता रहा हूँ। क्लास फर्स्ट में मेरे साथ जब संगमित्रा मिस आई, उसके बाद क्लास टू में रीटा मैम, देन क्लास थ्री में जब मैं आया तो सारा सिडनी मैम, उसके बाद क्लास फोर्थ में सुभा कौर, क्लास फिफ्थ मिंदु गाबा मैम, क्लास सिक्स आई थिंक मनोरमा दुबे, सेवेंथ मिश्रा मिस, एट्थ क्लास में नीलिमा रॉय, नाइन्थ में वी अगेन गॉट नीलिमा रॉय एज अ क्लास टीचर, क्लास टेंथ में मेरे ल्यूक मिस क्लास टीचर बनी, क्लास इलेवंथ विमल सेठ एंड क्लास ट्वेल्थ विमल सेठ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक नाम भी झूठा नहीं है। मैं अपने स्कूल टीचर्स को बहुत याद करता हूँ क्योंकि मैं आज लाइफ में जो भी हूँ आई वॉज वेरी नॉटी किड, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत करी और एटलीस्ट इतना पढ़ा लिखा कर बना दिया कि मैं कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम में ना फंसूं। 89.6 मिर्ची वन पर टीचर्स को दिल से सलाम, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स इन एडवांस। मिर्ची इट्स हॉट, बाय, मां सलाम, मिलते हैं सैटरडे की शाम चांदार में।

0: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
5: मेरा हेयर फॉल भी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna...

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
4: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldar.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया सीरियसली? कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यौन दिखा का विद क्लब मिर्ची बेबी नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची लेट्स गो

इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची रे।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू को
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पक्का
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है.
4: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
1: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के आठ की पानिंग विद क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर

एनर्जी जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस इज योर रिमाइंडर दैट कैलोरीज कंज्यूम्ड व्हाइल डांसिंग डोंट काउंट. साइंटिफिक प्रूफ? None. We can believe system? Absolutely.

0: हेलो
1: हेलो बेटा नवनीत,
0: आप कौन?
1: पापा कहाँ हैं?
0: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
1: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
0: लेकिन आपको काम क्या है?
1: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
0: पापा ने कहा था?
1: चुप कर! पापा ने कहा था, मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
0: क्या हुआ अंकल?
1: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
0: अब मुझे क्यों डांट?
1: चुप कर!
0: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
0: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं,
1: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
0: लेकिन बुरी क्या
1: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
0: बदतमीजी क्या करी थी?
1: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
0: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
0: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
1: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
0: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
0: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
1: चुप कर! मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
8: on a ride.
9: Club Mirchi with Oyon Dika and DJ Richard. Only on

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
5: मेरा हेयर फॉल भी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
8: Ladies and gentlemen.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
4: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
3: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, I'm Mirchi Helpline.
2: Yes, of course. मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूँ?
2: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
3: साले को खोपड़ी तोड़, साले।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: मतलब ये गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा, आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
2: दस पत्ते तोड़े
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके सॉरी हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव
3: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा
3: तो सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: आए हो गया और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
1: मेरा हेयर फॉल भी।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था ये खुद।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: शंकर महादेवन,
4: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
5: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
3: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
3: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
1: उसे सब पता है
4: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
1: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
5: Ladies and gentlemen.

यू आर बैक, क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. वेदर यू आर क्रूजिंग विद योर गैंग और डांसिंग इन योर बेडरूम मिरर, टुनाइट वी आर ऑल हैप्पी बंजारास चेसिंग गुड वाइब्स ओनली.

हॉट है। ये था गुची संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we have a

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
4: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Mirchi Banger, ye gana hot hai.
6: Mirchi Banger, gana hot hai.

0: गाना हॉट है।
1: ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्स सिंह। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका का विद क्लब मिर्ची बेबी. नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज. दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची. लेट्स गो.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: बेटा? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को। बेटे
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स ऑल डाउन एंड डन इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड।
7: The bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
5: मेरा हेयर फॉल भी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Ladies and gentlemen.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: मतलब ये गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा, आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे, उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए, ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस
2: पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
2: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव
3: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा तो नहीं
3: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 89.6
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
5: मेरा हेयर फॉल भी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
4: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
3: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोर्डल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go!